0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
4: নমস্কার কলকাতা
3: 107 FM রেইনবো তে, নমস্কার কলকাতা,
4: নমস্কার কলকাতা।
5: 8:32 হয়ে 2 সেকেন্ড, তুমি শুনছো আর জে মৌমিতার সঙ্গে শুক্রবারের নমস্কার কলকাতা। আর আজকে হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি ডে, তো সেই

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपके साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। तो दोस्तों, कभी कभी जो होता है, इस सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुनकर नींद खुली है, कभी बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू महसूस की है, या फिर कभी पेड़ की छांव में बैठकर ऐसा लगा हो कि जैसे सारी थकान गायब हो गई। अगर हाँ, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में प्रकृति अभी भी मुस्कुरा रही है। लेकिन सोचिए, अगर एक दिन ये चिड़िया ना चहके, पेड़ कम हो जाए, तितलियां दिखना बंद हो जाए, नदियां सूख जाए, तो क्या हमारी दुनिया वैसे ही खूबसूरत रहेगी? ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, लेकिन आज भी ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि आज है 22 मई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैव विविधता दिवस आखिर है क्या? तो बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो धरती पर मौजूद हर छोटा बड़ा जीव, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, नदी, जंगल, पहाड़, यानी प्रकृति के सारे रंग मिलकर बनाते हैं जैव विविधता। और आज की हमारी गपशप इन्हीं रंगों के नाम रहने वाली है। और अभी आपने सुना इस गीत को फिल्म राम तेरी गंगा मैली से कोकिला कंठ लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। और इस कार्यक्रम को शुरुआत करते एक और ऐसे गीत के साथ जिसमें प्रकृति की खूबसूरती भी है और जिंदगी की मिठास भी है।

बिल्कुल दोस्तों, इन पर इन प्रकृतियों की चीज़ों को देखकर ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कभी सोचा है आपने, अगर पेड़ जो है अगर वो बोल पाते तो क्या कहते? शायद वो कहते, इतनी धूप में भी तुम्हें छांव दी, इतना सब कुछ दिया, फिर भी तुमने हमें काट दिया। सुनने में थोड़ी भावुक बात है, लेकिन सच भी है। आज शहर बड़े हो रहे हैं, लेकिन पेड़ छोटे होते जा रहे हैं। कंक्रीट पड़ रहा है और हरियाली घट रही है, और इसका असर सिर्फ मौसम पर नहीं, हमारे जीवन पर भी पड़ रहा है। पहले गर्मियों में आंगन में नीम का पेड़ होता था, दादी हाथ वाला पंखा लेकर बैठती थी और आम के पेड़ पर झूले पड़ते थे। लेकिन आज मोबाइल की स्क्रीन तो चमक रही है, पर आंगन सूना हो गया है। दोस्तों, प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं, ये हमारी जिंदगी की जरूरत है। एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, वो पक्षियों का घर भी होता है, बच्चों की यादें भी होती है और धरती की मुस्कान भी। तो क्यों ना आज एक छोटा सा वादा करें, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, जिसमें प्रकृति की खूबसूरती को बहुत ही प्यार से बयां किया गया है।

तो दोस्तों याद है बचपन में सुबह सुबह कितनी चिड़ियों की आवाज सुनाई देती थी, गौरैया, कोयल, बुलबुल, तोता। लेकिन अब गौरैया ढूंढने पर भी कम दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उनके रहने की जगह कम होती जा रही है, पेड़ कट रहे हैं, पुराने घर खत्म हो रहे हैं और मोबाइल टावरों का असर भी माना जाता है। दोस्तों ये सिर्फ एक चिड़िया के गायब होने की बात नहीं, ये प्रकृति के संतुलन के बिगड़ने का संकेत है। अगर छोटे छोटे जीव खत्म होने लगे तो धीरे धीरे पूरी प्रकृति प्रभावित होती है। और शायद इसीलिए आज का दिन हमें याद दिलाता है कि धरती सिर्फ इंसानों की नहीं, हर जीव का घर है। तो क्यों ना गर्मियों में छत या बालकनी में एक कटोरी पानी रख दी जाए, थोड़े दाने रख दिए जाए। यकीन मानिए किसी प्यासे पक्षी की दुआ बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों हमारा भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया के सबसे खास देशों में गिना जाता है। यहाँ हिमालय भी है, रेगिस्तान भी, घने जंगल भी है, सुंदर समुद्र भी। कहीं कश्मीर की वादियाँ हैं तो कहीं सुंदर वन के मैंग्रोव जंगल। और इन्हीं जंगलों में रहते हैं बाघ, हाथी, गैंडा, शेर और ना जाने कितने अनोखे जीव। लेकिन दुख की बात यह है कि कई जीव अब खतरे में है, क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं, प्लास्टिक बढ़ रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही है। दोस्तों प्रकृति हमसे कुछ ज्यादा नहीं मांगती, बस थोड़ा सा सम्मान। जितना हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे उतना ही सुरक्षित हमारा भविष्य होगा। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:26 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। और दोस्तों बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 11 बजे तक। तो यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए मेरे साथ कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। तो चलिए दोस्तों वक्त हो चला एक और मधुर से प्यारे से गीत की ओर चलने का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह

0: 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।
2: टेन 9 8 7 सिक्स 5 4 3 2 1 लेट्स स्टार्ट द फन।

बिल्कुल दोस्तों, जब मौसम अपनी जादू चलाता है तो हम सब तो बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी गौर किया है कि हमारी हर छोटी ज़रूरत प्रकृति से ही तो जुड़ी है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज और दवाइयों के लिए जड़ी बूटियाँ, यानी हमारी पूरी जिंदगी प्रकृति पर ही टिकी हुई है। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि एक प्लास्टिक फेंक देने से क्या होगा, लेकिन जब करोड़ों लोग यही सोचते हैं तब नदियाँ गंदी हो जाती है, जानवर बीमार हो जाते हैं और धरती परेशान हो जाती है। इसलिए बदलाव हमेशा छोटी आदतों से शुरू होता है, जैसे कि पानी बचाना, प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना, पौधे लगाना, जानवरों और पक्षियों के प्रति दया रखना। ये छोटी बातें मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। और जब ये बदलाव आएंगे ना, तो हम ये कहते हुए नहीं थकेंगे कि भाई क्या मौसम आ चुका है। यानी कि जब प्रकृति की खूबसूरती बढ़ जाएगी ना, तो देखते ही बनती है।

तो दोस्तों आज की गपशप बस इतनी सी थी कि क्योंकि प्रकृति कोई अलग चीज नहीं है, प्रकृति ही हमारी जिंदगी है। अगर पेड़ मुस्कुराएंगे तो मौसम खुश रहेगा, और अगर पक्षी चहकेंगे तो सुबह खूबसूरत लगेगी, अगर नदियां साफ रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों इसी खूबसूरत सोच के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज नॉनस्टॉप गपशप में हमने बातें की धरती के उन अनमोल रंगों की जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। पेड़ पौधे नदियाँ पक्षी जंगल, ये सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी सांसों हमारी यादों और हमारे भविष्य का आधार है। तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सब एक छोटा सा संकल्प लें, प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल नहीं

उसका सम्मान भी करेंगे, एक पौधा लगाएंगे, पानी बचाएंगे और धरती को थोड़ा और हरा भरा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराएगी तभी जिंदगी भी खिलखिलाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। अब दीजिए इजाजत, अपना और अपने आसपास की प्रकृति का खूब ख्याल रखिए। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मुलाकात होगी नॉनस्टॉप गपशप में नई बातों और नई मुस्कान के साथ, और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 107 FM रेनबो, सात सुरे सारा दिन, सात सुरे सारा दिन।
4: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक मन।
5: আমরা আবার ফিরে এলাম গান্ধরিয়াতে। আমরা আছি নাটকের গান নিয়ে, কাজী নজরুল ইসলামের নাটকের গান।
6: আজকে সঙ্গে আছি মধুমিতা আর সোমা।
5: এবং এই যে গান শুনছি, গান শোনাবো, এই একটা প্রস্তুতি থাকে তো, যখন তার সঙ্গে লেখা বা জানা বিষয়টা এক হয়ে যায় তখন তার একটা অন্যরকম মানে। আমরা প্রথম পর্বে ছিলাম মহুয়া নাটকের গানে, দ্বিতীয় পর্বে বেশ অনেকটি অনেক কটা নাটক।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
4: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त रिंकू और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो और कार्यक्रम है तीन का तड़का। रिंकू के साथ आप रहेंगे, जी हाँ, क्योंकि इस तड़के में ही कुछ बात है। क्योंकि दोस्तों, शहर के सबसे मसालेदार शो का ही नाम तीन का तड़का है और ये सिर्फ मिलता है FM रेनबो 107 में। दोस्तों, यहाँ पर बातें होंगी तीन, काम भी होंगे तीन और मजा भी होगा गुना तीन। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए क्योंकि अगले इन घंटे में, एक घंटे में हम लगाने वाले हैं मस्ती का असली तड़का। तो चलिए, वक्त को नहीं बर्बाद करते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला गाना। अमित त्रिवेदी की आवाज में सुनिए रिंकू के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अमित त्रिवेदी को फिल्म क्वीन से। वैसे मैं आपको बता दूं कि गीत के बोल लिखे थे अन्विता दत्त ने और संगीत से सजाया था खुद अमित त्रिवेदी ने। जी हाँ, अमित त्रिवेदी सिर्फ एक संगीतकार ही नहीं बल्कि एक शानदार गायक और गीतकार भी है। वैसे उन्होंने अपनी फिल्म आमिर से शुरुआत की थी लेकिन असली पहचान उन्हें देवदी से मिली। इस फिल्म के संगीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था और अमित को एक्सपेरिमेंट संगीत के लिए जाना जाता है। उन्होंने लोक संगीत यानी कि फोक को मॉडर्न बीट्स के साथ मिलाकर एक नया ट्रेंड शुरू किया था। वैसे दोस्तों, अमित त्रिवेदी आज के दौर के उन संगीतकारों में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड संगीत की परिभाषा को बदल दिया था। आपके हमारे शो जो है तीन का तड़का के लिए और अमित त्रिवेदी के बारे में हम और भी गीतों के साथ और भी बातें जानेंगे, लेकिन इसके साथ एक सूचना आपको हम अभी दे देंगे क्योंकि जरूरी होती है ये सारी बातें और ये सारे चीजें। आइए सुनते हैं।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे गीत फिल्म टू स्टेट से ही आए हैं। वैसे इस गीत के जो सिंगर्स हैं अदिति सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य, उनकी क्या बात। वैसे तो ये फिल्म मशहूर लेखक चेतन भगत की किताब पर आधारित थी। इसकी कहानी एक पंजाबी लड़के जो कि अर्जुन कपूर जिसका किरदार निभा रहे थे, और एक थी तमिल ब्राह्मण लड़की जिसका किरदार आलिया भट्ट की थी। इस फिल्म में दिखाया कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं बल्कि दो लोगों के और अलग अलग राज्यों और संस्कृतियों के बीच की भी होती है। इस फिल्म के जो गीतकार थे, यानी कि जो गीत गा रहे थे, अमिताभ भट्टाचार्य के शब्दों के जादूगर कहा जाता है। अमिताभ भट्टाचार्य आज के दौर के सबसे महंगे और टैलेंटेड गीतकारों में से एक है, और उन्होंने अपने इस गीतों में, मतलब इस फिल्म के गीतों में दो गीत गाए जो बहुत ही अच्छे हैं। वैसे अमिताभ पहले सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें लिखने की तरफ ले गई और आज वो बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद है। अगर हम कहें कि अमिताभ भट्टाचार्य की कलम को सराहा जाना चाहिए तो बिल्कुल, और साथ ही में उनके देरी थी अदिति सिंह शर्मा जो कि रॉकस्टार आवाज़ है उनकी, और अदिति अपनी पावरफुल और रॉकस्टार आवाज़ के साथ हस्की आवाज़ के लिए भी जानी जाती है। और फिल्म टू स्टेट्स के सुपरहिट गाने ओफो में वो एनर्जी थी उनकी कि वो अदिति की आवाज़ की ही देन की कारण हो पाई। वैसे उन्होंने डेव डी और नो वन किल्ड जैसिका और धूम 3 जैसे फिल्मों में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। दोस्तों, ये तीन का तड़का का कार्यक्रम जारी है और आप सुनेंगे अगला पायदान मेरी ओर से।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और शबाब शाबरी की आवाज में फिल्म प्रेम रतन धन पायो से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और सजाया था संगीत से हिमेश रेशमिया ने। वैसे तो दोस्तों, फिल्म प्रेम रतन धन पायो राजश्री प्रोडक्शन की एक भव्य फिल्म थी जो पारिवारिक मूल्यों और प्यार के तड़के से भरपूर थी। आपको ये शो में ऐसी इस तरह की प्रेम और साथ में मस्ती के छींटे तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये शो ही कुछ ऐसा है तीन का तड़का। जी हाँ, और इस फिल्म में राजा और रंग यानी कि प्रिंस और पप्पू की जो कहानी से प्रेरित थी, इसमें सलमान खान का डबल रोल भी है। आप इस अगर पिक्चर को देखे होंगे तो आपको यह फिल्म उतनी बोरिंग करने वाली नहीं लगेगी, लेकिन पारिवारिक फिल्म में बहुत ही अच्छा लगेगा। फिल्म को बैठकर आप देख सकेंगे। और इनके गीतों ने, जो इरशाद कामिल ने इन फिल्मों के गानों को लिखा है, खास बात यह है कि इरशाद कामिल अपनी शायरी में सादगी और गहराई के लिए जाने जाते हैं। और इस फिल्म के टाइटल ट्रैक प्रेम रतन धन पायो ने पूरी दुनिया में डांस रील का रिकॉर्ड बना दिया था। वैसे इस फिल्म का संगीत हिमेश रेशमिया का है, जिन्होंने बरसों बाद राजश्री स्टाइल का सुरीला संगीत दिया। वैसे दोस्तों, तीन का तड़का में हम बारी लगा रहे हैं प्रेम का धन पायो के साथ साथ इरशाद कामिल साहब और साथ ही में इनके गीत, क्योंकि पाया मैंने पाया प्रेम रतन धन पाया, ये गाना हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और अपनों के साथ एक तरफ, क्योंकि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर। तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म धड़क से अजय अतुल की आवाज में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया था खुद अजय अतुल ने। वैसे दोस्तों धड़क एक जो थी उसमें श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर और साथ में थे शाहिद कपूर के भाई। पिक्चर तो बहुत हिट हुई लेकिन शायद इस फिल्म से दूसरी फिल्म धड़क इतनी ज़्यादा चली नहीं। वैसे चलिए स्टूडियो की घड़ी में 3:29 हो चुके हैं, तो चलिए हम अभी सुन लेते हैं परियोजना प्रस्तुति।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: दोस्तों परियोजना प्रस्तुति में अभी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय पे। तो चलिए देर नहीं करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हर सिर में छत, यानी कि जैसे हर घर मोदी होना चाहिए वैसे हर सिर में छत भी होना चाहिए। ये योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के मुख्य दो भाग थे, एक शहरी भाग था और एक ग्रामीण भाग था। पी में यू यानी कि शहरी भागों में शहर में रहने वाले गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए था और पी में जी यानी कि ग्रामीण में गांव में रहने वाले परिवारों के लिए एक भाग अलग था। इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन इससे पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं ये है कि ब्याज में इसकी सब्सिडी, यानी कि अगर आप घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो सरकार ब्याज पर भारी सब्सिडी देती है, लगभग 2.67 यानी कि 67 लाख रुपए तक की बचत। और महिलाओं का सशक्तिकरण, घर का मालिकाना हक घर की महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर होना अनिवार्य है। इसमें केवल दीवारें नहीं बल्कि शौचालय, बिजली कनेक्शन, LPG कनेक्शन और पीने के पानी की सुविधा भी शामिल है। और बजट 2.0 यानी कि जून 2024 में नई सरकार ने 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने को मंजूरी दी है ताकि कोई भी परिवार बिना छत के ना रहे। और इसके साथ जो ग्रामीण योजना और शहरी योजना था इसके बारे में भी हमें जानकारी मिले तो अच्छा है, क्योंकि इसकी जो ग्रामीण योजना के तहत हम अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले शहरी योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। एक प्रमुख आवास योजना थी जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग दोनों ही वर्ग सहित शहरी गरीबों को किफायत

0: किफायती आवास उपलब्ध कराना। सभी के लिए आवास लक्ष्य को 2022 तक प्राप्त करना था, जिसे अब दिसंबर 2025 से 26 तक भी बढ़ा दिया गया है। बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना अनिवार्य है और इन सीटू स्लम पुनर्विकास क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना और साझेदारी में किफायती आवास लाभार्थी नेतृत्व निर्माण या फिर सुधार इस योजना के तहत है। शहरी गरीब जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ही शामिल है। पात्र समूहों के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी। इस मिशन पर संपूर्ण शहरी और क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक नगर सूचित योजना क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण जो शहर नियोजन और विनिमय कार्य में संबंधित हो। लाभार्थी और उपरोक्त चार घटकों में से किसी एक भी में भी लाभ मिलेगा। और साथ में अगर हम ग्रामीण की बात करें तो व्यक्तियों को स्वयं अपग्रेड किया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य भारत में शहरी गरीबी और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना है। व्यक्तियों को स्वयं के घर बनाने में सहायता मिलेगी। निजी डेवलपर्स के साथ साझेदारी में किफायती आवास प्रदान किया जाएगा और प्रवासी श्रमिकों और गरीब श्रमिकों वर्ग के लिए किराए के आवास समाधान किया जाएगा। पात्र लाभार्थियों के लिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी। योजना का उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अन्य सरकारी पहलों के साथ समन्वय स्थापित कर समग्र विकास सुनिश्चित करना लागू किया जाएगा। इसे आप PMIU यानी कि 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन खुल चुके हैं, आप कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति आधिकारिक PMAYU वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं या अपने शहरी स्थानीय निकाय ULB या अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर CSC से संपर्क भी इसे आप कर सकते हैं।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, तीन का तड़का का शो चल रहा है। तीन के तड़के में बारी थी आवाज की। दोस्तों कहते हैं चिराग से चिराग जलता है, और नुसरत फतेह अली खान साहब वो सूरज थे जिनकी रोशनी ने पूरी दुनिया को कव्वाली का दीवाना बना दिया। और आज उसी खानदान की विरासत को राहत फतेह अली खान साहब आगे बढ़ा रहे हैं। जब राहत जी गाते हैं तो कभी कभी आंखें बंद करने पर लगता है जैसे नुसरत साहब ही लौट आए हैं। वही तान, वही हरकत और वही रूहानियत। और इसी शाम को बना रहे हैं ऐसी उस्तादों के संगम में हम हमारे शो आपके लिए। लेकिन अभी 3:38 हो चुके हैं, शो का आधा घंटा बाकी है। चलिए सुनते हैं और गीते।

0: जी हाँ दोस्तों, मीत ब्रदर्स हॉलीवुड के और बॉलीवुड के संगीतकार की जोड़ी ऐसी बनी है कि हमारे बॉलीवुड में इस तरह के संगीतकार भी आए हैं अब कि संगीत में पार्टी और मस्ती का एक नया तड़का लगाया गया है। आपके हमारे शो में बॉलीवुड की वो संगीतकार जोड़ी बहुत कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो क्या खूब मिलती है। वैसे मीत ब्रदर्स में जो दो भाई है ना, मनमीत सिंह और हरमीत सिंह, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ की थी, लेकिन बाद में संगीत की दुनिया में उन्होंने तहलका मचा दिया। इनके गाने शादियों और पार्टियों की जान होते हैं और ये पंजाबी लोक संगीत के मॉडर्न क्लब बीट्स के साथ बहुत ही खूबसूरती से मिलाते हैं और बनाते हैं। और इनके साथ कनिका कपूर के साथ जोड़ी वीडियो बनाते हैं बेबी डॉल और साथ में चिट्ठियां कलाइयां जैसे इन सभी गाने में वो काफी मशहूर हो चुके हैं। तो दोस्तों, मनमीत सिंह और हरमीत सिंह गाने फिर एक और सुनते हैं साथ ही में उनके।
1: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे मीत ब्रदर्स की आवाज में फिल्म ड्रीम गर्ल से ये गीत। और आप तो जानते ही हैं कि तीन का तड़का शो चटपटा बनाने के लिए हम हैं। शायरियां हैं, कहावतें हैं और मसालेदार बातें भी हैं। दोस्तों जिंदगी में स्वाद चाहिए तो मेहनत का तड़का लगाइए, और अगर मूड फ्रेश करना है तो मेरा शो यानी कि आरजे रिंकू का शो तीन का तड़का जरूर दिखिए। वैसे तो दोस्तों हमारे गीतों में उन सब गीतों के लिरिक्स और हम बातें तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ में आपको मजेदार शायरियां भी सुना रहे हैं। तो चलिए, समय बहुत कम है, स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 3:47 हो चुके हैं। केके की आवाज में सुन लेते हैं प्यारा सा गाना केके की आवाज में।

बारे में हम जब बात करते हैं तो बड़ी गर्व के साथ कहते हैं कि क्या आवाज थी उनकी। लेकिन दोस्तों एक बात बड़ी मशहूर थी कि वो बहुत शर्मीले थे। उन्हें लाइमलाइट के ज्यादा माइक के सामने गाना पसंद था। उनका कहना था कि मैं अपनी आवाज के पीछे छुपकर रहना चाहता हूं। आज हम ये सब गीते सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त कान में कह रहा है कि दोस्त सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन इनकी खासियत भी कुछ ऐसी थी कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने लगभग 3500 एड्स सिंग जिंगल्स गाए थे और फिल्म माचिस के गाने छोड़ आए हम वो गलियां से शुरुआत की। लेकिन पहचान उनको मिली हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से और उनका एल्बम पल आज भी विदाई का सबसे बड़ा गाना है। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात बताऊं केके की खासियत क्या थी। केके की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने संगीत की कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। ये सिर्फ सुनकर गाते थे और शायद इसलिए उनकी आवाज सीधे रूह तक पहुंचती थी। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो रिंकू के साथ कार्यक्रम तीन का तड़का और आरजे रिंकू आपके लिए फिर से लाएगी गीतों का सफर। लेकिन स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि सफर और समय में थोड़ा सा अंतर होता है। तो 3:53 हो गए हैं, गीत छोड़ जा रही हूं आपके लिए बढ़िया सा। सुनते रहिए और रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 107 FM रेनबो, शांत सुरेश आरडे, शांत सुरेश आरडे।
4: তুমি শুনছো উইকেন্ড ক্যাফে 107 FM রেনবোতে। উইকেন্ড ক্যাফে, উইকেন্ড ক্যাফে।

0: টেলে লয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो और मैं हूँ आपकी दोस्त रिंकू। जी हाँ, वक्त हो चला है आपकी पसंदीदा शो सेलुलाइट सुपर हिट्स का। जी हाँ, सेलुलाइट सुपर हिट्स, जहाँ पर हम बात करेंगे आज अपने उस सफर के, जो सिनेमा के उस दौर का, जहाँ कहानियाँ दिल से लिखी जाती थी और संगीत रूह में बस जाता था। तो दोस्तों, अपनी चाय की प्याली हाथ में लीजिए, उसको थाम लीजिए, क्योंकि आज सुरों की बारिश होने वाली है। वो कहते हैं ना कि कुछ नगमे वक्त की धूल में खो जाते हैं, पर कुछ क्लासिक्स

0: होकर भी अमर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं उन गीतों को सेलुलॉइड सुपर हिट्स में, और कहते हैं कि उन गीतों के पीछे की कहानियां क्या है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे उस गीत की जिसके बारे में आप शायद सुने भी नहीं थे या फिर जाने भी नहीं थे, लेकिन हम उन गीतों की कहानियों को अपने दौर से अपने तरीके से आपके सामने पेश करेंगे।
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
0: जी हाँ, ऐसा गीत जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं उसकी कहानी। आइए शुरू करते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की उस गीत से।

जी हाँ दोस्तों, सेलुलाइट सुपर हिट्स के सफर में अब हम 2000 की उस सरहद पर खड़े हैं जहां पर ये दो सितारों ने अपनी किस्मत की कहानी लिखी थी। कच्छ के रेगिस्तान की वो रेत और सोनू निगम की मखमली आवाज। जी हाँ, फिल्म रेफ्यूजी की ये सदाबहार नगमे जो आप सुन रहे थे। वैसे इस फिल्म की कहानी की सबसे बड़ी खास बात ये है कि लोगों ने इस शायरी को तो बहुत खास समझा, लेकिन जावेद अख्तर और अनु मलिक की इस फिल्म में जुगलबंदी थी। साथ ही में रेगिस्तान की तपती गर्मी और दो बड़े सितारों का जन्म हुआ था। यहाँ यह फिल्म और गाना ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि इसी से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा था। जहां एक तरफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे का दबाव था, वहीं दूसरी तरफ कपूर खानदान की लाडली करीना की मासूमियत थी। इस गाने में उनकी केमिस्ट्री ने सबका दिल जीत लिया था और साथ ही रेगिस्तान की उस तपती गर्मी, जी हाँ कच्छ की उस गर्मी में ये फिल्म की शूटिंग हुई थी। जेपी दत्ता अपनी फिल्मों को असल लोकेशन पर शूट करने के लिए जाने जाते हैं और इस गाने की शूटिंग कच्छ के रण में हुई थी। वहां की भीषण गर्मी और धूल भरी हवाओं के बीच इस रोमांटिक गाने को शूट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन पर्दे पर ये बहुत ही सुकून देने वाला और ठंडा एहसास देता है। वैसे इस गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे और संगीत अनु मलिक ने दिया था। अनु मलिक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने पहली बार इसकी धुन बनाई तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया था कि ये गाना सालों साल सुना जाएगा और इस फिल्म के संगीत के लिए अनु मलिक को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। और साथ ही इसमें एक और जादू था, वो था सोनू निगम और अलका याग्निक का जादू। सोनू निगम की रेशमी आवाज और अलका याग्निक की मिठास इस गाने को अमर बना देती है। इस दौर में

0: गाना हर रेडियो स्टेशन यानी कि 107 एफएम रेनबो पर भी छाया हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं अभी सेलुलाइट सुपरहिट्स का 107 एफएम रेनबो मेरे साथ यानी रिंकू के साथ।
1: सेलुलाइट सुपरहिट्स।

जी हाँ दोस्तों, 1991 का फिल्म साथी का ये गाना जिंदगी की तलाश में। दोस्तों, दर्द और पछतावे की ऐसी दास्तां है जिसने उस दौर में हर टूटे हुए दिल को सहारा दिया था। यहाँ इस गाने में बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि कुमार सानू का वन टेक जादू कहा जाता है कि कुमार सानू ने इस गाने को बहुत ही कम समय में और बहुत ही गहराई के साथ रिकॉर्ड किया था। नदीम श्रवण जो कि इस फिल्म के संगीतकार थे, वो चाहते थे कि उनकी आवाज में एक थका हुआ इंसान और उसके जीवन का पछतावा झलके, और सानूदा की आवाज ने इसे अमर बना दिया। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही गाया, और साथ ही साथ इस फिल्म में गीतकार के साथ आदित्य पंचोली का यादगार अभिनय भी। जी हाँ, इस फिल्म में यादगार अभिनय किया था आदित्य पंचोली ने। ये गाना फिल्म के मुख्य अभिनेता आदित्य पंचोली पर ही फिल्माया गया है। फिल्म में उनका किरदार एक ऐसे अपराधी का है जो गलत रास्ते पे चलकर सब कुछ खो देता है। जब वो जेल से बाहर आता है तो अपनी बर्बादी देखता है, तब ये गाना उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से बयां कर देता है। और साथ ही इस फिल्म को चार चांद लगाए थे महेश भट्ट का निर्देशन ने। इस फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट थे, जो कि इंसानी जज्बातों को पर्दे पर उतारने में माहिर माने जाते थे। उन्होंने इस गाने को बहुत ही सादगी से शूट किया था ताकि दर्शकों का ध्यान गाने के शब्दों पर रहे। दोस्तों, भले ही साथी एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, लेकिन इसकी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय इसके संगीत को ही जाता है। जिंदगी की तलाश में आज भी 107 FM रेनबो पर सदाबहार श्रेणी में बजाया जाता है, और 1990 में भी बजाया जाता था। तो आइए हम एक और गीत सुनते हैं निर्देशक महेश भट्ट के।

जी हाँ दोस्तों, सेल्यूलाइट सुपर हिट्स में अब ये फिल्म जो आशिकी है इसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म जो 90 के दशक में मोहब्बत की एक नई परिभाषा लिखने वाली फिल्म थी। जी हाँ, आशिकी एक ऐसी फिल्म जिसके गानों में कैसेट की भरमार लगा दी थी। गानों ने कैसेट इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वो कहते हैं ना करीब आए ना वो दूर गए, बस निगाहों से वो दिल में उतर गए, और धड़कनों ने भी आज एक सुर छेड़ा है कि नजर के सामने जब वो एक पल ठहर गया। और आज इसे फिल्म के साथ एक और गीत एस बी बालासुब्रमण्यम और साधना सरगम की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म प्रेम कैदी जो कि 1991 में आई थी, और इस गाने ने जो एक फिल्म का सुपरहिट गाना था, इस गाने का सबसे बड़ा प्रभाव ये था कि इस गाने की सबसे बड़ी खूबी इसकी गायकी थी। इसे दिग्गज गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने गाया था। जी हाँ, एसपीबी की गहरी आवाज और चित्रा जी की सुरीली आवाज ने इसे एक बेहतरीन रोमांटिक ड्यूट बना दिया था। और साथ ही दोस्तों, 90 के दशक की शुरुआत में आनंद मिलन की जोड़ी एक के बाद एक हिट दे रही थी, और इस गाने की धुन बहुत ही सरल लेकिन जुबान पर चढ़ने वाली थी, जो आज भी एफएम रेनबो में खूबी सुनी जा रही है। लेकिन ये एक और बात ऐतिहासिक डेब्यू है इस फिल्म की, कि इस फिल्म में करिश्मा कपूर की ये फिल्म पहली थी। और हम आपको बता दें कि इस गाने ने या इस फिल्म ने बॉलीवुड को उसका सबसे बड़ा सुपरस्टार दिया था, वो थी करिश्मा कपूर। उस दौर में कपूर खानदान की बेटियों का फिल्मों में आना आम बात नहीं थी, लेकिन करिश्मा ने इस फिल्म से उस परंपरा को तोड़ा। इस गाने में उनकी मासूमियत ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके लिए उस समय साउथ के अभिनेता हरीश कुमार थे, उन्होंने उसका साथ दिया, और इस फिल्म में दक्षिण भारतीय सिनेमा का भी प्रभाव दिखता हुआ नजर आता है। प्रेम कैदी दरअसल एक तेलुगु फिल्म प्रेमा खैदी की रीमेक थी, इसलिए इसके संगीत और फिल्मांकन में दक्षिण भारतीय फिल्मों की झलक मिलती है। ये फिल्म कम बजट में बनी थी, लेकिन संगीत के दम पर बहुत ही सुपरहिट साबित हुई थी। दोस्तों, सेलुलॉयड सुपरहिट में हम सुन रहे हैं इस तरह के गीते और इस तरह के गीतों के पीछे की कहानियां, क्योंकि हम अगर कहे कि लोलो यानी कि करिश्मा कपूर एक जैसी फिल्म जिसने प्यार को कैद से आजाद करने की कहानी सुनाई है। लबों पर नाम है तुम्हारा, दिल में तुम्हारी याद है, बिना तुम्हारे ये जिंदगी बिल्कुल बेस्वाद है, पुकारती है ये धड़कन तुम्हें बार बार, प्रियतमा बस तुम्हारा ही इंतजार है। सुना था हमने ये गीत, लेकिन इन गीतों के साथ 1990 के दशक में और भी गीत थे जिन्हें हम सुनाए जा रहे हैं आपको, और लता मंगेशकर की आवाज में ये अगला गाना आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म लम्हे लम्हे, ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे की फिल्म मानी जाती थी। इसमें एक ऐसे व्यक्ति यानी कि अनिल कपूर, जिसे अपनी पुरानी मोहब्बत की बेटी श्रीदेवी से प्यार हो जाता है। हालांकि ये फिल्म उस वक्त भारत में बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला और इसने कई फिल्म फेयर अवार्ड जीते। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का दोहरा जादू ये था कि इस फिल्म में श्रीदेवी ने माँ पल्लवी और बेटी पूजा दोनों के किरदार निभाए थे और इस गाने में उन्होंने जिस नजाकत और चंचलता से डांस किया, उसके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी कथक की मुद्राएं और आंखों के भाव इस गाने की जान है। लेकिन जान तो एक और चीज है कि इस गाने को लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज दी थी। उस उम्र में भी लता जी ने एक जवान लड़की की चंचलता को अपनी गायकी में बखूबी उतारा। संगीतकार शिव हरि पंडित, शिव कुमार शर्मा पंडित और हरि प्रसाद चौरसिया ने इसमें शुद्ध और भारतीय संगीत का तड़का लगाया था। ये गाना राजस्थान की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया था। यश चोपड़ा ने राजस्थानी लोक संस्कृति और क्लासिक धुनों को इस तरह से पर्दे पर उतारा कि वो आज भी मिसाल है। जी हाँ, सुरों में नजाकत, आंखों में हया है, ये संगीत नहीं रूह की दवा है। छेड़े ना हमें कि हम बहक ना जाए, आज हवाओं में भी तो एक अलग सी अदा है। इस फिल्म की खूबसूरती इस फिल्म के सभी जो कलाकार थे उन लोगों के ही कारण है। इसे आज कल्ट क्लासिक के नाम से इसलिए ही नहीं सराहा जाता क्योंकि ये फिल्म अपने से ज्यादा भविष्य वाली फिल्म थी। ये उम्र से ज्यादा पहले की कहानी। आइए सुनते हैं एक और गीत, कविता कृष्णमूर्ति और मनहार साथ में है सुखविंदर की आवाज में, फिल्म सौदागर से।

जी हाँ दोस्तों, 90 के दशक का वो जादू, वो कैसेट के फीते, वो यादों के घेरे, और 90 के दशक के थे अंदाज भरे सुनहरे। वो ना इंटरनेट का शोर था, ना बनावटी बातें थी, सिर्फ सुरों के मेले थे और हसीन रातें थी। वैसे इस फिल्म सौदागर में साथ दे रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, मनहार और सुखविंदर, लेकिन इस फिल्म को हिट बनाने में इस गीतों के बोल जो आनंद बख्शी के थे और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वैसे इस फिल्म में और भी दो कलाकार थे, वो थे दिलीप कुमार और राजकुमार, जिन्होंने इस फिल्म में जान डाली थी और इस फिल्म में दर्शकों को खींचा था। साथ ही इस फिल्म में एक और अभिनेत्री थी, मनीषा कोइराला, जिन्होंने इस फिल्म में पहली बार कदम रखा था और नेपाल की दुनिया से भारत में पदार्पण किया था, और उनका साथ दे रहे थे विवेक मुशन। सब मिलाकर इस फिल्म को हिट बनाने में इन सभी कलाकारों का बहुत ही बड़ा योगदान था। वैसे दोस्तों, 90 की दशक और सेल्यूलाइट सुपरहिट में अब हम रुक कर रहे हैं उस दौर पर जब सलमान खान के लंबे बालों और उनकी सादगी पर पूरी दुनिया फिदा थी। साल 1991, फिल्म सनम बेवफा और लता दीदी की वो सुरीली आवाज। आइए उन आवाज के पीछे हम भी खो जाते हैं, क्योंकि ब्लॉकबस्टर फिल्म सनम बेवफा के उन गानों में उस दौर में सावन कुमार के निर्देशक में बनी इस फिल्म का संगीत महेश कुमार ने दिया था, और आज भी 90 के दशक के ताजा उन गीतों को याद हम अभी भी करते हैं। आइए सुनते हैं विपिन सचदेवा की आवाज में ये गीत।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: या दोस्तों, आप सुन रहे थे सभी कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत, लेकिन हमारे सेलुलेट का ये कार्यक्रम चल रहा है और आप सुन रहे 107 FM रेनबो
1: सेलुलॉइड सुपर हिट्स।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में ये गीत फिल्म जिंदगी एक जुआ फिल्म से, जिस फिल्म का संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और संगीत से सजाया था राकेश प्रकाश मेहरा ने। दोस्तों अब एक जरूरी सूचना।
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
0: जी हाँ दोस्तों, एक जरूरी सूचना के अनुसार आज मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मालदा मुर्शिदाबाद बीरभूम के लिए नाउकास्ट मौसम की चेतावनी मिली है और ऑरेंज अलर्ट किया गया है। जी यहां पर तेज आंधी तूफान और बिजली गिरने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे 22/5/2026 यानी कि आज शाम को 7:25 से अगले 2-3 घंटे के दौरान मालदा मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले के कुछ हिस्सों पर इसका असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस पर ऑरेंज अलर्ट किया है।
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
0: जी हाँ दोस्तों, इसके साथ एक और सूचना है झाड़ग्राम के, जो कि मौसम विभाग ने अपनी जानकारी के अनुसार बताया है कि झाड़ग्राम, पश्चिम बिंदापुर और हुगली जिले में भी ऑरेंज

0: अलर्ट किया गया है और कहा गया है कि 22/5/2026 को शाम 7:20 से अगले 2-3 घंटों के दौरान झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर और हुगली जिले के कुछ हिस्सों में मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसीलिए मौसम विभाग ने सभी झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर और हुगली जिले के मौसम विभाग के व्यक्तियों के लिए एक ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है और सतर्क रहने की चेतावनी दी है।
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे सेल्यूलॉइड सुपर हिट में मौसम विभाग से सूचना। आप सुनते हैं और रुक करते हैं अगले गीतों की ओर, क्योंकि ये हमारा सेगमेंट चल रहा है उन गीतों का, सेल्यूलॉइड गीतों का, जिसको हम आज बजा रहे हैं और उनके इतिहासों और उनके गीतों से भरी बातों को भी सुन रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और मौसम विभाग तो क्या आपकी उस घड़ी को भी याद कर लेंगे जहां पर हम छाए हुए हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, 90 के गीतों की बात ही कुछ और है और साहब इस पे लफ्ज कम और जज्बात ज्यादा रहते हैं। वक्त बदल जाता है मगर ये नगमे हवाओं में खुशबू की तरह यूं ही ताजा रहते हैं। दोस्तों, कुमार सानू की ये आवाज और जान तेरे नाम फिल्म की ये गीत आज भी वैसे ही हिट है और आज भी एफएम रेनबो में सुना जा रहा है। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की बातें, उन गीतों के पीछे की कहानियां जो हम आज भी दोहराते हैं। तो आइए, उन गीतों के साथ साथ हमें उन गीतों के किस्सों के बारे में जो हम कह रहे हैं चलते चले जाते हैं। ये सिलसिला अभी और है आधा घंटा और हम आपके साथ यूं ही बने हुए। आइए सुनते हैं फिल्म सौदागर का ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, महफिल में कुछ इस अदा से ये गीत धड़कते हैं कि हर धड़कने बोल उठती है और सुर के ताल के साथ एक साथ झनकार से बोल उठती है। और आज हम आपको 90s के वो सेलुलॉइड सुपरहिट्स के बीट्स याद दिला रहे हैं, झनका रहे हैं और अब सुन रहे हैं 107 FM रेनबो रिंकू के साथ सेलुलॉइड सुपरहिट। जी हाँ,
1: सेलुलॉइड सुपरहिट्स

जी हाँ दोस्तों, गूंजती है जो कानों में वो आवाज उन्हीं की है जिसको हम सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, लता मंगेशकर की, और इस महफिल की हर रौनक उन्हीं की है। छेड़ो कोई ऐसा सुरीला साज जो हम तुम यानी कि मैं और आप फिर से रूबरू हो जाए और फिर से उन गीतों को, उन जो बीते हुए लम्हों के गीतों को फिर से हम याद कर पाए। दोस्तों, समय की गति धीरे धीरे अपने पैमाने पर चल रही है और 8:49 हो चुके हैं, तो चलिए बाकी गीतों को भी हम सुन लेते हैं क्योंकि समय की गति बहुत धीरे धीरे नहीं बल्कि जल्दी जल्दी चल रही है। आइए सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म बरसात से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, लम्हे गुजर जाते हैं पर यादें रह जाती है, और महफिलें उजड़ जाती है पर बातें रह जाती है। भले ही हम आज यहाँ से रुखसत हो जाए, मगर हमारे ये गीत आपके साथ हमेशा रहेंगे। और इसी बात के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगी आपसे। अगले अंक में अगले दौर पर आपसे फिर मुलाकात होगी। रिंकू आपकी इंतजार में और आपके साथ रूबरू होगी फिर से, लेकिन इसके साथ मैं कुमार सानू की आवाज में ये गीत छोड़े जा रही हूँ। सुनते रहिए इस गीत को और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।